0: करचे सो मुझे भी कर दो
1: तेरे से तू भी चाहिए है
0: मुझे निश्चित होता है
1: जी शा तक कर गोर मची था मिसाल में रंग गुड़े शा तो उसने सेम कुछ ली था क्योंस क्यों क्योंस क्योंस
0: शाम दे दे जगह जगह क्यों जो
1: आज मैं ना जोई
0: लेव यू तो जिंग जिंग बिल्ला
1: दे यंग जगह जगह
2: कंचे तो दे जेब तो गई
1: जेब तो कहाँ सा जो सुधू
2: खाला इंजी सागना सागा जोर बे ताजी चिकन लोकसुन से चिल सगरी राशो ता थगरी
3: Shorta,